0: अच्छा इसमें इसको है
1: खुबियाओं की इंकार मेरी इंकार
0: इंकार जो आई फिर सेक्स नहीं करती You can show me clear on file.